पौड़ी वड्डी हुंडा पार तेरा मर्तबा रंग परें कनी जापन करतबा जी आंदर जियो सब की जान ला सब इस तेरा वस तेरा घर भला तेरे घर अनंद बधाई दुध घर माण महत्ता तेज अपने आप जल सर्व कला भरपूर दिस जित कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवत्ता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया के लै सकल जगत

बादशाह कौन जाने गुण तेरे गावे ते ओए दावे सुनते उदवे वायर गावे ते ओए दावे सुनते उदवे वायर बिन से बाप घने वे बिन से बाप घने वे सचिया पातशाह बिन से बाप घने रे पैसे पड़े तगे दे कोई तारे वाहिर पैसे पड़े तगे दे कोई तारे

निरंकार निरंकार जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय

पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहेरी लय पहार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान ओ आहे बिनोदा गावे हैं सरस बसंत कमोदा।

0: जय जय सकल द्वार को छाट
1: के स्वामलेश की कर बुढ़ापा सार डंका बाजिफ्ते कान हिकलंक अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते स्वयं पौ स्वं सर्वदास सर्वयुक्ते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूप सतांग संगे अपांग विभूत देख ते गुप्त व्याप्त नान गुरु गोविंद सिंह जी काल सहाय दरबार में दरबारा सचखंड सरनकारा ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਮਨੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਸਿੰਘ